0: है लाइका रेडियो सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Our radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
0: Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Like a radio.

0: Cracker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, 3394।
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: क्या कर रहा हो?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
2: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
2: Also explore 2026 cruises
1: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
3: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02023 773 633। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: Punjab, the biggest tunes.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. ये है लाइका गोल्ड.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल
3: Protected.
4: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
5: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840 TW Pays हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत
0: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% of full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533 065549.
6: Yeh hai LAIKA Go!

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
2: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
3: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
4: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
5: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
4: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
1: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
6: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
7: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
6: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
7: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
6: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
7: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
9: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
10: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे?
11: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
9: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
12: दुल्हन के लिए मेकअप.
9: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
13: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
14: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
13: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
14: Or sales at leicamedia.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
15: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100. और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
17: LemFi means quicker and safe way to send money.
18: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
17: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
18: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
19: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
0: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जी आशा भोसले और शशि कपूर की आवाजों में था ये गाना फिल्म सुहाग से, जो 1979 में आई थी। उससे पहले आपने शरण प्रभाकर और बप्पी लहरी की आवाज में गीत सुना। और लीजिए दो गीतों के साथ आज के शो की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागतम। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज भी ऋतु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे 1 बजे तक, और सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। उम्मीद है सब मजे में है और इस मौसम का मजा ले रहे हैं या फिर परेशान हो गए हैं, इस बारे में बात होगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन एंड ऑफ जून यानी कि जून के खत्म होने से पहले पहले आपको 75 पाउंड्स का वाउचर मिल सकता है एवरीडे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स एंड ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by RAC Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज आपको बता दें कि ग्रुप जे में जॉर्डन और अल्जीरिया की टीम्स खेलेंगी, ग्रुप के में पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान की टीम खेलेंगी, ग्रुप वन में नॉर्वे और सेनेगल, और ग्रुप एल में आज इंग्लैंड और घाना के बीच में मैच होगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by RAC Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: We hit
3: Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
9: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
3: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
11: આવા એટલે કેવા?
9: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
11: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
9: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
11: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
12: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, પિકલ્સ હીટ, યે હૈ જયમીન ફૂડ્સ કા વાઇબ ચેક.
13: એડ દેસી તડકા ટુ યોર રૂટીન વિથ જયમીન ફૂડ કે વેરાઇટી ઓફ સ્નેક્સ, ખાખરા, નમકીન, પાપડ, પિકલ્સ, ચિક્કી, પોટ મીલ્સ એન્ડ મચ મોર.
12: જયમીન ફૂડ્સ, દેસી ક્રેવિંગ્સ, અવેલેબલ એટ નિયરેસ્ટ એથનિક ગ્રોસરી સ્ટોર્સ.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
14: Kuch exciting khane ka man hai? To aao, Egg Junction Leicester. Yahan milega sizzling egg keema, flavorful boil tikka rice aur special veg starters. Sab ke liye kuch na kuch hai. 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS par. Chahe dine in karo, take away lo ya Uber Eats or Deliveroo se mangwao. Call kijiye 0116-332-5100. Egg Junction, jo Wembley aur Kingsbury mein to hai, ab Leicester mein, jahan har bite hai extraordinary.
15: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
16: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: प्यार के दो।
1: वैसे इस गाने में बात तो बिल्कुल सही कही है और खूबसूरत गीत है आशा जी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आई थिंक इस फिल्म में शमी कपूर थे और ये 1969 में आई थी। तो चलिए इस गीत को भी आप सबके नाम करते हैं और एक बार फिर से सभी का स्वागत कर देते हैं शो में। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम और ये है आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: तो लीजिए मेरे आने से ही पहले आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू ज्योति, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू भरत गंगाराम जी, मिसेस शेख, महेंद्र बजारिया, दिव्या जी हैरो से, गिरीश जी भारत से, रमीला जी, हीता सोलंकी और जितने भी साथी घर में हैं, गार्डन में हैं, किचन में हैं, काम पर हैं, गाड़ी में हैं, बाहर हैं, शॉपिंग पर हैं, जो भी कर रहे हैं सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। साथ देते रहिए क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है आज के प्रमुख समाचारों की।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 15 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। इस लापरवाही के मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती हवाएं जो होती हैं उसके कारण तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेर फेर से जुड़ी जांच में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का गहन ऑडिट कराने की सिफारिश की गई थी और महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 20,552 करोड़ के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब कुछ खबरें विदेश से, लेकिन उससे पहले ये और बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्री के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हो गई है। और अब समाचार दुनिया से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और धमकियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। कच्चा तेल 2% बढ़कर 82 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिससे जो आयातक है देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज एमिरेट्स द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर द्विपक्षीय बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत खत्म हो गई है, जिसके बारे में ईरानी संवाददाता ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नाराज होकर बैठक छोड़कर चला गया ईरानी डेलीगेशन, जिसके बाद अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और बैठक की मांग की है। गालिवाफ कहते हैं कि 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से कहा कि हम यहाँ बातचीत के लिए आए हैं। समझौते की पहली शर्त में साफ लिखा है कि कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपके राष्ट्रपति ने धमकी दी है, ये जान लो कि हम धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर कहा है कि वो इस मुद्दे का हल निकाल लेंगे। और आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 22 जून के दिन एक बार फिर से अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी और फ्रांस के सुपरस्टार किलियन एम्बापे के नाम रहा। दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाई। अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ही अपने शुरुआती 2-2 मैच जीतकर अब तक अपने अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई हैं और या कहूं अगले दौर में पहुंच गई हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
2: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: 1976 की ये जो फिल्म है ना, इसने चार चार फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर खमियाम को मिला था, बेस्ट लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी जी को मिला था, बेस्ट प्ले बैक सिंगर का अवार्ड मुकेश जी को मिला था, और इस फिल्म के डायलॉग्स भी काफी पसंद किए गए थे। तो एक अवार्ड विनिंग फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, और हमारी प्रज्ञा कहती है कि रितु मैं भी सुन रही हूँ, सो थैंक यू प्रज्ञा साथ देने के लिए। और शोभना राय जी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो सभी का स्वागत है जो इस शो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो भाई समर का टाइम चल रहा है, और अगर आप कहीं हॉलीडे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल साउथहॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए आप साउथहॉल ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं 0208 574 8410 पर। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: लीजिए, ये थी आवाज कुमार शानू और साधना सरगम की। और हमारे गिरी जी का कहना है कि आप आए और अच्छे गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। और शोभना राय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम सुन रही हैं। लेकिन ये जो फिल्म थी मिथुन दा की फिल्म थी, और मिथुन दा को देखिए कितने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। लगभग 350 से ज्यादा फिल्म्स में इन्होंने काम किया है और इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत हिट फिल्में की हैं लेकिन उतने ज्यादा अवार्ड्स उन्हें नहीं मिले जितने मिले हैं मिथुन दा को। और आज भी देखिए कभी कभी हंसते मुस्कुराते हुए टेलीविजन पर आ जाते हैं और अच्छा लगता है उन्हें देखकर। तो ये थी मिथुन दा की फिल्म, और ये गाना उनकी फिल्म का बड़ा ही पॉपुलर है जिसे आज प्रोग्राम में जगह मिली। थैंक यू साथ देने के लिए। जगदीश जी बुशी में हमारे साथ हैं, रंजन जी हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपको बता दें कि भाई कल रात को क्या बिजलियां चमकी थी, क्या तेज बारिश आई थी, क्या बादलों की गड़गड़ाहट थी। नींद तो खुल गई थी लेकिन मन में खुशी हो रही थी कि अच्छा है, हो जान दो जितनी बारिश हो रही है, कम से कम थोड़ी ठंडक तो हो जाएगी जिससे रात को नींद अच्छी आएगी। और देखिए उस बारिश का फल, आज मौसम अच्छा है, बढ़िया है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, और मतलब बाहर गार्डन में बैठकर प्रोग्राम को सुनने का मजा ही अलग है। जैसे कि हमारे साथी हैं जिन्होंने कहा है कि मैं गार्डन में बैठकर आपका शो सुन रहा हूं, और अब उनका नाम क्या है वो सारे मैसेजेस में कहीं गुम हो गया है। तो बता दीजिए कौन है जो आप गार्डन में बैठे हैं और सुन रहे हैं, आपका नाम कहीं मिस मतलब मैसेजेस में इधर उधर चला गया है। जब तक मैं आपको ये बता देती हूँ।
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 100 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
0: जी हाँ बिल्कुल, ये है आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन, जहाँ पर एक बार फिर से याद दिला दूँ, ऋतु शर्मा है आपके साथ सिटिंग इन फॉर रवि जी, क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलीडे पर गए हैं इसलिए 2 वीक बाद वो लौटेंगे और तब तक मैं इस शो में आपका साथ दूंगी। एंड रंजन जी आप गार्डन में बैठकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मानसी जी भी जुड़ गई हैं। तो चलिए अगला गीत आप सभी के नाम करते हैं और मिलते हैं गीत के उस पार चिंतन के साथ।
4: ये है Leica Radio. Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifco Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifcoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family. Radio partner, Leica Radio.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: वेलकम टू द जंगल
4: फिल्म बिल्कुल फेक
3: हमारे फिल्म आर्मी वाली
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में
9: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11-5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
10: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
13: Leica Radio.
14: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है
15: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
16: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
15: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
17: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
1: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में आज ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। जैसा कि आप जान ही गए हैं अब तक कि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर हैं, तो उनकी जगह आज इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी। और 11 बजे की खबरों का समय, खबरों के बाद का समय चिंतन का है। तो चलिए करते हैं आज के चिंतन की शुरुआत, यानी कि आज के विचार की शुरुआत। आज के चिंतन में बात करने वाली हूँ श्री राम की। अगर हम श्री राम का जीवन देखें तो उनके जीवन से जो

जुड़ा हुआ हर प्रसंग अपने आप में एक सीख है। उनसे जुड़ी हर बात हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ले जाती है। उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर और गहरा प्रसंग है, जिसे आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो हमें अहंकार से मुक्ति, प्रेम और समानता की बहुत बड़ी सीख देता है। और ये प्रसंग प्रभु का बड़प्पन भी दिखाता है। हम सबने सुना है कि जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले तो पैदल ही थे, सोने जवाहरात, अच्छे भारी भरकम कपड़े, रथ घोड़े सब छोड़कर सिर्फ वनवासी की वेशभूषा में चल पड़े थे और पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो जब आगे बढ़ रहे थे, उन्हें मार्ग में गंगा नदी पार करनी थी। और जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी के किनारे केवट अपनी नाव लेकर खड़ा था। श्री राम ने केवट से कहा, भैया हमें अपनी नाव में बैठाकर जरा नदी के उस पार ले चलो। लेकिन केवट प्रभु राम को पहचान गया था। जब स्वयं ईश्वर केवट के सामने खड़े हों तो केवट उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। केवट ने श्री राम के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। उसने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई ऐसा जादू है कि आपने पत्थर को छूकर उसे भी सुंदर स्त्री बना दिया था। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर आपके पैर की धूल से ये भी सुंदर स्त्री बन गई तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। इसलिए जब तक मैं आपके चरणों को धोकर इसकी धूल नहीं हटा लेता, तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। केवट का ये भोलापन और चतुर प्रेम देखकर श्री राम मुस्कुरा दिए और उन्होंने हर्ष खुशी खुशी उसे अपने चरण धोने की अनुमति दे दी। केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए, उन्हें नदी पार कराई और नदी पार करने के बाद श्री राम को संकोच हुआ कि केवट को उतराई में क्या दें, यानी कि नाव का जो किराया है उसके रूप में क्या दें, क्योंकि वो तो वनवासी के भेष में थे, सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। लेकिन माता सीता प्रभु के मन की बात जान गईं। उन्होंने अपनी एक कीमती अंगूठी उतार कर श्री राम को दी और जब श्री राम ने वो अंगूठी केवट को देनी चाही तो केवट ने हाथ जोड़ लिए और श्री राम के इस कार्य से केवट की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या कभी एक ही जाति के लोग एक दूसरे से मजदूरी लेते हैं? एक जात के लोग, एक काम करने वाले लोग कभी भी एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते हैं। मैं घाट का केवट हूं, लोगों को गंगा पार कराता हूं, लेकिन आप भवसागर के केवट हैं, आप लोगों की जीवन नैया पार लगाते हैं। आज मैंने आपको नदी पार कराई है, लेकिन जब मेरा समय आए तो आप मुझे इस भवसागर से पार लगा देना प्रभु, यही मेरी उतराई है। श्री राम के इस निश्चल प्रेम को देखकर, केवट के इस प्रेम को देखकर श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हम सब जानते हैं कि श्री राम एक राजा के पुत्र थे
साक्षात विष्णु के अवतार थे, ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण और एक समाज का जो वंचित वर्ग कहा जाता था उसे अपने गले से लगा लिया बिना एक मिनट भी गवाए। और ये दिखाता है कि जाति, पद, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान को बड़ा बनाता है उसका चरित्र और उसका प्रेम। भगवान होकर भी श्री राम ने केवट के सामने कोई अहंकार नहीं दिखाया, वो उसके प्रेम में विवश हो गए। और देखिए, केवट ने भी भगवान से धन दौलत नहीं मांगी, वो भी चाहता तो उसे पता था कि ये अयोध्या के राजा हैं, इनके पास कोई कमी नहीं, महल दुमहले हीरे जवाहरात मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ ईश्वर का अवतार आशीर्वाद मांगा और अपने जीवन को भवसागर पार लगाने का वचन मांगा। ये बताता है कि जो असली ज्ञानी होता है ना, उसके लिए जीवन में भौतिक सुखों का कोई अर्थ नहीं होता। जरा संसार की सुख सुविधा से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और अच्छे कर्मों को महत्व दीजिए, उस ईश्वर को याद कीजिए जो आपके जीवन को भवसागर पार लगा सकता है। इस प्रसंग से हमें यही चिंतन करना चाहिए कि सच्चे मन से हमें ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, उसके यहां देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, आपकी बात की सुनवाई वहां जरूर होती है।

0: आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज का यही चिंतन था, आज का यही विचार था। और इस गाने को हमने नया दौर फिल्म से लिया था, जिसकी एक एक लाइन इतनी सही लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से इस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लिखने वाले ने क्या खूब गीत लिखा है। और जिन्होंने लिखा है उनका नाम है साहिर लुधियानवी। आज के चिंतन को, आज के विचार को आपने पसंद किया है, थैंक यू। हमारे राजेश जी कहते हैं कि आज के चिंतन में एक और अच्छी बात थी, जिसे आपने, एक संदेश था जिसे आपने अच्छी तरह पेश किया, थैंक यू। हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हम अपने आप के प्रति सच्चे रहें, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, और कर्तव्यों को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएं, और उस ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर इस उम्मीद को आप अपने अंदर रखेंगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और बाकी की चीजें जो आपके बस में नहीं है ना, वो उस पर छोड़ दीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। थैंक यू निर्मला जी, महेंद्र पटेल जी, थैंक यू सीमा जी क्रॉइडन से, आपको आज का चिंतन अच्छा लगा, थैंक यू हंसा जी, शेखर आनंद जी, महेंद्र बजारिया जी, जैस्मीन, थैंक यू, स्वागत है आपका। थैंक यू गिरीश जी, भारती दीदी जी, थैंक यू जगदीश जी, अर्जुन जी, राजीव पटेल, नीलम जी, रागिनी, हरविंदर, थैंक यू विजय घुनोवा जी, नरेंद्र पांचाल जी, उल्लास जी, हरीश रुदा, जासू जी, मृदु जी, मानसी जी, थैंक यू, आप सभी के ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। यही था आज का चिंतन। चलिए आज के चिंतन को समेटते हैं, कल एक और नया चिंतन लेकर आएंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 पाउंड आपको देगा 125 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और जून के खत्म होने से पहले पहले आप जीत सकते हैं 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज मैचेस जो होने वाले हैं, ग्रुप वन में नॉर्वे और सेनेगल की टीम साथ साथ खेलेंगी, पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान के बीच में मैच होगा, आज इंग्लैंड और घाना की टीम भी खेलने वाली हैं, और इन मैचेस को तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है जब आप हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से बात करते हैं और कहते हैं कि लाइका, देन वो आपको 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस दे देंगे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rivco Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click rivcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner, Leica Radio.

0: सही कह रहे हैं महेंद्र जी कि हम राजेश खन्ना को इस फिल्म में भूल नहीं सकते, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म राजेश खन्ना से ज्यादा आर डी बर्मन के म्यूजिक के लिए जानी जाती है। उनका म्यूजिक इस फिल्म में फिल्म से ज्यादा पसंद किया गया था। और देखिए तभी तो आज भी ये गाना जब भी बजता है, बज रहा है, तो इतने सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ज्योति लिखती है, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना, मेरा फेवरेट है, ऋतु मेरे नाम कर दो। किया हमने ज्योति जी आपको दिया, मानसी जी ये गाना हमने आपको भी दिया, भारती जी आपको नया दौर का भजन बहुत सुंदर लगा, और कहती है कि जो आज का जो चिंतन था मेरी आंखों में आंसू ले आया। तो जब आप प्रभु की बातों में, प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं ना, तो ये आंखों से आंसू अपने आप ही जाने क्यों बहने लगते हैं। मैंने भी ये अनुभव किया है। मैं जरूर आपके साथ किस्सा शेयर करूंगी, लेकिन थैंक यू भारती जी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं। थैंक यू विजय गुनवा जी। और सीमा कहती है कि मैं जब भी गाड़ी में होती हूँ मुझे आपका शो सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है सीमा, आपने तो दिल खुश कर दिया। और रोहित, आपका मैसेज आया है, कहाँ थे इतने दिन, बड़े दिनों बाद आपने आज मैसेज भेजा है, लेकिन स्वागत है इस शो में आपका भी। पूजा हमारे साथ है, कामिनी पटेल, रक्षा जी हमें सुन रही हैं और रानी जी सुन रही हैं, क्या बात है। चलिए अगला गीत आप सबको डेडिकेट करते हैं,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
2: ये है
1: Leica Radio. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यह सुरफी साहब और लता जी के आवाज में एसडी बर्मन के म्यूजिक पर देवानंद की फिल्म जूल थी से लिया था ये गाना। और शेखर जी कहते हैं कि आपने अभी आरडी बर्मन की म्यूजिक का गीत सुनवाया और अब आप एसडी बर्मन का गीत सुनवा रही हैं। बहुत फर्क है, बाप आखिर बाप होता है, तो कुछ भी हो जाए बाप तो बाप ही रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता। थैंक यू, आपको गीत अच्छा लगा तो चलिए हम ये गाना आपको डेडिकेट किए देते हैं।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस आए हैं जिन्हें जरूर जिक्र करूंगी। ये मैसेज भेजा है मुझे परहित कालिया जी आपने, तो सबसे पहले तो कहूंगी कि आपका नाम बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार सुना है। और आपने कहा कि जो चिंतन का मैसेज था मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ उसने, और राम राम आपको भी, जय श्री राम एंड थैंक यू साथ देने के लिए। इसके अलावा जावेद अवान ब्लैकबर्न में सुन रहे हैं और कहते हैं हमें तुमसे प्यार कितना, ये गाना जब आपने बजाया तो मैंने भी इसके साथ साथ गाना गाया पर पता नहीं कोई सुनने वाला था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं जावेद जी, अगर आप अच्छा गा रहे होंगे तो जरूर आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर गाया अच्छा नहीं होगा तो फिर अब मैं क्या बहूं, आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन थैंक यू, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है, अच्छी बात है एंड मुझे अच्छा लगा आपके मैसेज पढ़कर, थैंक यू। तो बढ़ जाते हैं आगे और एक और बहुत खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ, इस बार आवाज है मुकेश जी की।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो इस बार का नया टॉपिक है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का, साउथ एशियन वेमेन इन स्पोर्ट्स, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और आप इसे सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
5: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
6: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
7: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
8: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
7: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
4: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
9: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે।
10: અંકલ, તમે પહેલાથી આવા જ છો?
11: આવા એટલે કેવા?
9: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર।
11: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તું? બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે।
9: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન। ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ।
11: સો થઈ જાય जिंदगी वंस मोर।
9: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
14: be part of a historic grand opening.
2: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
2: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
16: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
17: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
18: जगदात्री,
17: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
18: माला ले आना, लाया जी.
17: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
19: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
17: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
20: Location.
21: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
21: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
20: high appreciation
21: in Dubai.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LikeARadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Did you know that Like A Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Like A Radio mobile app. Making summer feel better on the Like A Radio Network.

0: यस, आज बड़े दिनों बाद बेटा फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में शामिल किया है। और इस गाने में, इस फिल्म में माधुरी क्या खूबसूरत लगी थी। और माधुरी तो है ही खूबसूरत। अभी कुछ दिन पहले वो इंडियाज बेस्ट डांसर में भी आई थी, तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी हाल फिलहाल में ही उनकी एक फिल्म भी आई है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसका नाम है माँ बहन। और मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं है, आप में से किसी ने देखी है क्या? जिन्होंने देखी है वो बता रहे हैं कि इस फिल्म में वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रही हैं और उसमें उन्होंने एक अलग ही तरह का कैरेक्टर निभाया है। कहते हैं जो रंगों से भरा हुआ है लेकिन उसमें एक इमोशनल बात भी है। तो मुझे अभी समय नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जल्द ही इस फिल्म को देखूंगी क्योंकि लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म के कारण उनकी जो एक प्रॉपर छवि थी ना, धक धक गर्ल वाली, वो भी काफी अलग इमेज इस फिल्म के थ्रू उनकी हो रही है। तो बताइए अगर आपने देखी है, कैसी लगी आपको ये फिल्म माधुरी की नई माँ बहन, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए। और ये तब होगा जब आप ट्रांसफर करते हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा जून के खत्म होने से पहले आप जीत सकते हैं 75 pounds का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर टू 1000 pounds एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: खिलौना फिल्म से था ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में। और नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नरेंद्र जी, हमने ये गाना आपको डेडिकेट किया। ये गाना मैंने खिलौना फिल्म से लिया था, जिसमें हीरो तो थे संजीव कुमार, साथ में थी मुमताज, लेकिन ये गीत जितेंद्र और मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था। और इस फिल्म के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में संजीव कुमार को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। एनीवेज, ये गीत आप सबने पसंद किया। और आपको बता दें कि भाई ऐसे और भी गाने आप लाइव सुन सकते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं, 90s के गीत जरूर, या फिर हरिहरन जी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कौन से गाने सुनवाते हैं। तो आपको याद दिला दें कि लेजेंडरी हरिहरन यूके आ रहे हैं सोल इंडिया उन्हें लेकर आ रहे हैं एट रॉयल फेस्टिवल हॉल में लंदन। सैटरडे 4 जुलाई को उनका शो होने जा रहा है। टिकट्स अवेलेबल है southbankcenter.co.uk पर, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है लाइका रेडियो नेटवर्क। अगर आप हरिहरन को लाइव सुनना चाहते हैं तो फौरन अपने टिकट्स बुक कराइए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और दिया, आपका भी मैसेज आया है, आप भी शो को सुन रही हैं और गीतों को एंजॉय कर रही हैं, तो चलिए अगला गीत दिया आपके नाम पर करते हैं।

0: क्रिश शरीफ बदमाश का ये गाना प्रज्ञा आपको डेडिकेट करते हैं और आपके साथ साथ हमारे चंदू जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। स्वागत है चंदू जी आपका। और शमीम शफीक हेस से मैसेज भेजती हैं, कहती हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, मैं तो बस रूम में पंखा चला के आपका शो एंजॉय कर रही हूँ। इससे अच्छी बात शमीम जी कुछ हो ही नहीं सकती, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बस आराम से हमारा साथ देते रहिए। और आपको बताते चले आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत बजाने से पहले,
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आपको बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आ रहा है माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, जिसके बारे में हम आजकल बातें भी कर रहे हैं और आज चिंतन भी हमारे राम के बारे में था। और अगर आप श्री राम के बारे में और भी जानना चाहते हैं और उनको उनका जो नाटक है उसे एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं और स्टेज पर देखने का मजा ही कुछ और है, तो आपको याद दिला दें कि ये सब होने जा रहा है बिटवीन 9th and 12th July के बीच में एट लंदन्स एवेंटियम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा जो एक जाने माने एक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया है, रावण का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और राहुल बुच्चर बने हैं राम। तो इस शो को अगर आप देखने जाना चाहते हैं जिसका नाम है हमारे राम, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कराइए।
1: दिस इज लाइका रेडियो, ये है
3: लाइका रेडियो। This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: लीजिए किशोर दा और लता जी की आवाजों में था ये गाना। ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है। और हमारी नलिनी जी का कहना है कि ऋतु जो गाने आज आपने बजाए हैं सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है, आपको मजा आ गया, ये पढ़कर मुझे भी मजा आ गया और आपको श्री राम का चिंतन भी बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई आपने ये 3 में सुनी थी। क्या बात है, अच्छी बातें तो बार बार सुननी चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज है नहीं ना, क्योंकि जितनी बार आप अच्छी बातें सुनेंगे उतनी ही वो आपके अंदर जाने की यू नो पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा मन होता है, खराब देखेंगे तो खराब मन होता है, और इसीलिए चिंतन में हमेशा अच्छी बातें लेकर आई जाती हैं। थैंक यू आपके ढेरों मैसेजेस के लिए। और अब समय है खेल के बारे में बात करने का, क्योंकि ICC का वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है।
1: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो लीजिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी हैं और इनसे ही जानते हैं कि आज क्या होने वाला है। कमल जी,
3: ऋतु जी क्या टाइमिंग है आपकी, जस्ट विकेट एक गई न्यूजीलैंड की और एक ग्लव कैच हुआ जस्ट नाउ फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो अभी खेल रहे हैं स्कॉटलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड स्कॉटलैंड इज 131/7 इन देयर 20 ओवर्स एंड नाउ न्यूजीलैंड इज बैटिंग बट दे आर अंडर प्रेशर। आई मीन अभी 29/3 है 5.3 ओवर्स में और एक कैच ड्रॉप हुआ एंड दे आर बॉलिंग सो वेल, फील्डिंग अच्छी कर रहे बट व्यू इज सो हॉट। But I tell you, there is a very good crowd at the ground and the ground is looking beautiful. Then you've got Sri Lanka playing Ireland this afternoon, the Shamko. Then you've got the big one, Australia-Pakistan. That's going to be an exciting game because Pakistan would like to finish on high before they go home. And Australia would want 2 more points to go up and be the top leaders. So Australia around 6 points at the moment, India 4 points, South Africa 4 points. Bangladesh 4 points and on the other group England 6 points and West Indies 6 points and they'll be fighting out tomorrow. So Ritu at the moment to garmi achhi ho aur itne achhe songs aap play kar rahe hain to crowd ko bhi acha lag raha hai, idhar sun rahe hain, maine suna 2-3 people are listening, but it is a great tournament at the moment. T20 Women's World Cup is going strong and stronger and we'll give you some more updates as it goes.
0: Thank you Kamal ji. तो आपको बता दें कि भाई दुबई जाने के लिए जितने भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब उठ चुके हैं और इसलिए अब आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। साउथ होल ट्रैवल को कॉल कीजिए फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 8574 8410
9: साउथ Travel at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
13: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
0: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चित्रगुप्त का संगीत और प्रेम धवन की लिरिक्स, ये गाने अब नहीं बनते। पैमी जी, आई होप यू लाइक इट। गोपी, यू टू, गुड लक विद योर कीमा कुकिंग टुडे। फिल्म है गेस्ट हाउस, 1959।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: जैसे राधानी माला जपी शाम की।
0: यहाँ पे एक हमारी लिसनर है जैस्मिन, वो माला जप रही है रूबी के नाम की, और मैं बाली रूबी बन के उसको जवाब दे रहा हूँ।

0: संतोष जी थैंक यू, ग्लैड यू लाइक दैट सॉन्ग. आपके नाम करते हैं हम तेरे मेरे सपने फिल्म 1971 की, लता जी ने गाया.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन.
0: कहीं दिन कहीं रात. Next hour, we shall remember Rahman.

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी

0: दरस्थान गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
0: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
3: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
3: होता है तो होने दो।

0: दिल ने फिर याद किया. आई नो आई ऑलवेज गेट टियरी व्हेन आई प्ले दैट पर्टिकुलर सॉन्ग व्हिच वाज मुकेश जी का गाया हुआ, जाऊं कहां बता ए दिल, जाऊं कहां बता ए दिल. इन्होंने इतनी गलतियां की अपनी बहन के साथ और वो डायलॉग्स जो बीच बीच में आते हैं वो समझाते हैं. लेकिन अगर आप एक्चुअल वीडियो देखें उस गाने का, जहाँ पे श्यामा ऑफ कोर्स प्लेज द नास्टी भाभी रोल, लेकिन छोटी बहन जो फिल्म थी उसमें नंदा का किरदार और रहमान साहब का किरदार लाजवाब. आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन फ्रॉम व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय. आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ रहमान साहब बिकॉज ही हैड दैट सुआव look about him, a nature, the voice, the acting. He had done several different kinds of roles. Sayyed Rahman Khan, born on 23rd June 1921 till 5th November 1984. Abhi aaj hum unko yaad kar rahe hain on his 105th birth anniversary. Ab dekha jaye to he grew up in Jabalpur. अभी इनकी एंसेस्ट्री देखी जाए तो 1905 में इनके जब अफगानिस्तान से जितने भी एंसेस्टर्स थे दे मूव टू पंजाब इन इंडिया फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान. एंड देन इनकी एंसेस्ट्री जो है इट गोज वे बैक टू किंग अमानुल्लाह खान ऑफ पगमान and from founder of Durrani Empire. ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन he had this look about him, a very kingly look, and we can know where it came from because the ancestry was such. चलो shortcut मारते हैं, पता लगाते हैं college कौन सी थी. He grew up in Jabalpur and then after graduation Robertson College में पढ़े. He joined the Royal India Air Force after graduation. बहुत देर चला नहीं because he didn't quite enjoy it. So he left and he went for films. वहाँ पे कैमरे के पीछे उनको एक नौकरी मिल गई as an assistant director. वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है. That was the year after college, 1942. जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था एट पूना, विच इज पुणे नाउ, एज अ पायलट. अपील नहीं किया तो ऑब्वियसली छोड़ दिया, लेकिन आगे जाते हुए अच्छा ही हुआ. हिज मूवी करियर स्टार्टेड विद अ जॉब एज थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर टू विश्राम बेडेकर एट द स्टूडियोज इन पुणे ओनली. एंड देन विश्राम नीडेड An Afghan who could tie a Pashtun turban on one of his characters. Film ki shooting ke dauran unko ek turban bandhwani thi apne hero pe. And Rahman sahab of course could do that being a Pashtun himself. And that brought him to the screen for some lead roles. Unhone kaha ke you yourself are a very good looking young man, Vishram Bedekar ne kaha, and that led to him being getting lead roles. And one of his major hits as hero was Pyar Ki Jeet Suraiya ke saath. Wo gana hai na, ek dil ke tukde hazar hue, koi yahan gira koi wahan gira. That was a major hit unka Suraiya ke saath. And then he was also interested in marrying Suraiya, लेकिन वो तो पागल दीवानी थी देवानंद के साथ. एंड देन ही ऑल्सो वर्क विद मधुबाला इन पारस, परदेस एंड बोथ द फिल्म्स वर क्वाइट ओके यू नो. एंड आगे जाते हुए मीना कुमारी के साथ, गुरुदत्त के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई. एंड देन इनके अवार्ड्स देखे जाए तो सारे नॉमिनेशंस थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशंस. फिर सुबह होगी 1958 में, चौदहवीं का चांद 1960, साहेब बीवी और गुलाम 1962, दिल ने फिर याद किया 1966. कुछ कुछ गाने मैंने ऐसे चुने हैं जहाँ पे ही वुड बी प्लेइंग अ पियानो, जैसे कि क्या रंगे महफिल है दिलदारम 1966 की, दिल दिया दर्द लिया, उसमें रहमान साहब पियानो पे है. दूसरे गानों में लता जी गा रही हैं या आशा भोसले जी गा रही हैं, तो ही इज इन द पिक्चर। एंड ऐसे ऐसे गाने मैंने आज चुने हैं। वक्त का गाना आज मैंने नहीं चुना क्योंकि बहुत लंबा गाना है, आगे भी जाने ना तू। वक्त में अच्छा किरदार निभाया था चनॉय सेठ का, जी हाँ। फिर जैसी फिल्में आती गई, उनके कैरेक्टर्स और सपोर्टिंग रोल में आ गए फ्रॉम हीरो रोल्स, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं हम, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग सब जब हम फॉलो करते हैं। 1977 में 3 हार्ट अटैक हुए उनके, 3 हार्ट अटैक्स इन 1977, फॉलोड बाय लॉन्ग बैटल विथ थ्रोट कैंसर। दिस इज अ टेरिबल एंडिंग फॉर अ वंडरफुल पर्सनैलिटी ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। एंड ही पास्ड अवे ऑन 5th of November 1984। लेट्स रिमेंबर रहमान साहब दिस आवर ऑन लाइका गोल्ड। मैं हूं बाली ब्रह्मभट आपकी खिदमत में ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स 1035 मीडियम वेव ऑन गूगल एलेक्सा LaikaGold.com, also available on Radio Player and on Laika Radio Midlands. Show is sponsored by Jamin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yee-hey.
1: Laika Radio.
2: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: I've been thoroughly enjoying all the matches. Algeria beat Jordan 2-1. Norway beat Senegal 3-2. All exciting matches. Argentina beat Austria by 2-0. And we got Messi, who is the champion with the highest number of goals in FIFA. And that is 18 goals. Lekin पीछे फ्रांस के जो प्लेयर हैं बाबे, यस ही इज फॉलोइंग विद 16 गोल्स, अ यंग बॉय हु इज गोना कैच अप। एक्चुअली फ्रांस बीट इराक विद 1 गोल। अभी फीफा के रूल्स मैंने देखे तो एक बंदा था फ्राइडे 19th of June को पैराग्वे का प्लेयर जो था, ही वाज मिगेल अल्मिरोन एंड ही वाज सेंट ऑफ फ्रॉम द फील्ड विद अ रेड कार्ड। Do you know why? Because he was talking to an opponent with his mouth covered. That's a rule. You do not talk to an opponent with your mouth covered. Kyunki it could be swearing, it could be racist remarks or whatever. And that's the reason why they've made this new rule. And when I heard about it, I was quite amazed. But then it's quite a good rule. 6 p.m. it's going to be Portugal versus Uzbekistan. And 9 p.m. it's going to be England versus Ghana.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jamin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma. लिस्ट अप, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 एसिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
4: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
5: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk।
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner, Leica Radio.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, The Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
13: Leica Radio.
14: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
15: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
16: खुद से भी ज्यादा।
14: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
16: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
14: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
17: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
18: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
10: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट. पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
10: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
11: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
15: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles. Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
8: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. This is Leica Radio across the Midlands.

0: ये गाना पिक्चराइज हुआ था रहमान साहब पे. यस, इट्स बड़ी बहन 1949 की फिल्म, एंड हुस्नलाल भगतराम का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स थी. और वहाँ पे एक बैरे, इतनी अच्छी बैरे पहन के वो खड़े हैं दोनों हीरो हीरोइन, एंड रहमान साहब का बहुत खूबसूरत एक्टिंग था.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Asha Bhosle ji aur Manna Da ga rahe hain film Chhoti Behan mein. Beautiful lilting song. O Kali Anar ki na itna satao. Hope you're enjoying the tribute of Rahman Sahab. मीना कुमारी के साथ कितना अच्छा रिश्ता था इनका, मैं बताऊंगा कौन सी फिल्में.

ये गाना बड़ा प्यारा है, लेकिन मीना कुमारी जी की बात साहेब बीबी और गुलाम एज चौधरी शंभूनाथ हस्बैंड ऑफ छोटी बहू, दैट्स मीना कुमारी, एंड देन बहू रानी, कौन सी थी, बहारों की मंजिल एक दूसरी फिल्म थी 1968 की, दुश्मन 71 में, एंड गजल सुनील दत्त का प्रोडक्शन, बट सुनील दत्त वॉज इन लीड, बट रहमान साहब थे मीना कुमारी जी और उनके साथ। जी हाँ, साहेब बीवी और गुलाम, क्या गाना था। होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट ऑफ रहमान साहब।

0: All I can say is the two songs were superb and the number of messages that I received. But let's talk about Raj Babbar. Raj Babbar ji was born on 23rd of June 1952. Well, that makes him 13 days older than me. इसलिए बड़े भाई कहता हूँ मैं उनको. और आप सुनेंगे मैंने जो उनको आज मैसेज जो भेजा था, इनका ही गाना दिल की ये आरजू, वो गाना लेकर मैंने उनको विशेस भेजी थी, तो सुनाता हूँ. ये सुनिएगा, मैंने ये मैसेज भेजा था इनको.
1: आज लाइक आर गोल्ड पे दिल की ये आरज़ू है, हैप्पी बर्थडे कहे. हाउ कुड आई फॉरगेट दिस डे. हैप्पी बर्थडे टू यू राज जी. आई विश यू अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ. आज लाइक आर गोल्ड पे जोर शोर से आपका बर्थडे मनाया जाएगा और आपके सब गाने सुनाऊंगा मैं. दैट्स राइट. एंजॉय योर डे टू द फुलेस्ट. एंड नॉट ओनली दैट, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स एंड लोड्स ऑफ लव टू रेस्ट ऑफ द फैमिली. दिस इज योर ब्रदर बाली ब्रह्मभट्ट, ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सनी मुंबई.
0: और उन्होंने हंस के जवाब भी दिया, लेकिन आई वोंट गो इनटू ऑल दैट. मैं सिर्फ आपको कहना चाहता था कि ही शेयर्स सच अ बॉन्ड विद लाइका गोल्ड एंड ऑफ कोर्स विद मी सिंस आई वाज इन मुंबई. वो बातें अलग हैं, लेकिन लोग कहेंगे इज ब्लोइंग इज ओन ट्रम्पेट. उससे पहले मैं शुरू हो जाता हूँ. Two younger brothers, Kishan and Vinod. Vinod, sadly, is no more in this world. He passed away. Lekin Kishan ji ke saath inhone apna production house shuru kiya tha. Our production house was Babbar Films Private Limited with his younger brother Kishan. And two feature films inhone banayi thi. Karm Yodha, 1992 ki. And Kaash, आप हमारे होते 2003 में, विद सोनू निगम एज द हीरो. काश आप हमारे होते, वो 2003 की फिल्म विद जूही बब्बर. जूही बब्बर इनकी डॉटर, दैट्स राइट, हु इज आल्सो अ वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड शी वाज द हीरोइन इन दैट पर्टिकुलर फिल्म विद सोनू निगम डूइंग देयर डेब्यू. एंड टीवी सीरियल इन्होंने जो प्रोड्यूस की थी under the home production, Babbar Films Private Limited with his brother Kishan, was Maharaja Ranjit Singh 2010 ki TV serial. Ab, born in Tundla, that's Firozabad district in Uttar Pradesh, and the ancestral roots lie in Jalalpur Jattan, which is a city in Gujarat district, Punjab, Pakistan. इनकी दो बीवियां, नादिरा मैरिड इन 1975 एंड दे हैव टू चिल्ड्रन. सन आर्या हु वाज बोर्न ऑन 24th मई 1981 एंड डॉटर जूही. जूही हैज बीन टू लाइका एज वेल एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड सो मच टैलेंट इन हर. नाउ स्मिता पाटिल के साथ इनकी शादी हुई थी 1983 में, अंटिल हर डिमाइस इन 1986. 13th ऑफ डिसम्बर 1986 वॉज वेन स्मिता पाटिल डाइड. एंड सन प्रतीक वॉज बॉर्न ऑन 28th नवम्बर 1986. ही वॉज बॉर्न ऑन 28th नवम्बर 1986 एंड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दैट शी पास्ड अवे ऑन 13th डिसम्बर 1986. बट कमिंग बैक टू राज बब्बर जी, इनिशियल स्कूलिंग की थी मुफीद ए आम इंटर कॉलेज आगरा. इसलिए इनकी जो डायलॉग डिलीवरी में आप उर्दू का अंदाज देखते हैं, इट्स सच परफेक्शन इन देयर. एन एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन एक्टिव सिंस 1978, दैट इज 48 ईयर्स नाउ. एंड एक्टिंग में देखा जाए तो इन्होंने तालीम पाई थी स्टूडेंट ऑफ NSD. NSD इज सच अ ब्यूटिफुल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. न्यू दिल्ली में इन्होंने जो मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग की का एक्सपीरियंस इन्होंने लिया था इन्वॉल्व इन स्ट्रीट थिएटर. टोटल 159 फिल्म्स, 143 हिंदी फिल्म्स, 15 पंजाबी फिल्म्स, 1 बंगाली फिल्म, 2 गेस्ट अपीयरेंसेस, 2 स्पेशल अपीयरेंसेस एंड 1 कैमियो. इन्होंने डबल रोल्स किए थे 1985 में मेरा घर मेरे बच्चे एंड 1993 में आंखें फिल्म. पंजाबी फिल्में तो इतनी अच्छी अच्छी की थी, मुझे सिर्फ याद है शहीद उद्धम सिंह, दूसरी थी लौंग दा लश्कारा. काफ़ी 15 फिल्में हैं इनकी एंड द नॉमिनेशन ही गॉट फॉर एक्टिंग. दे वर ऑल नॉमिनेशंस एंड नो अवार्ड्स एंड बेस्ट एक्टर इन 1981 इंसाफ का तराजू, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1984 अगर तुम ना होते, then best actor 1985 mein aaj ki awaaz, best negative role 1994 mein film Dalal and best negative role again in 1996 in film Yarana. Insaaf ka tarazu mein bhi kya negative role tha inko inka. And 14th director of NSD, wo director jahan pe seekhe the acting wahin pe wo director bane the. चित्रंजन त्रिपाठी सिंस 6th of October 2023. एंड इंदिरा गांधी 1961 टू 1965 फॉर 4 years वॉज एंड ही वॉज चेयरपर्सन सिंस सितंबर 2020 एंड परेश रावल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अनुपम खेर वॉज फ्रॉम 2001 टू 2004 एंड इंदिरा गांधी हैड स्पेशली एकोलेडेड हिम. अब आगे जाते हुए हम इनके गाने सुनेंगे एंड वी शैल विश हिम हैप्पी 74th बर्थडे.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है Laika Radio.
0: विजय गुनोवा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ. ही पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक दैट आई हैड मेड. मैंने कहा था फ्रांस फ्रांस का जो विनिंग जो था एंड दैट वाज एक्चुअली 3-0. दैट्स फ्रांस 3-0. इराक वाज 0. Yes, that's the mistake I had made. In fact, I saw the match with all the three matches, all the three goals being scored. And tonight, 6 p.m., it's going to be Portugal versus Uzbekistan. And 9 p.m. is going to be England versus Ghana. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk.
4: Good Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
0: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
0: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE1 2JU या रोलेट हिल LE5 4UN।
4: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
9: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
10: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
11: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
12: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
11: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
8: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
13: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
14: डिस्कवर कैलास मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
13: बुक बिफोर द 31st of October एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
14: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
13: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल ऑन 01162167225। वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
15: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA।
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
17: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
18: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: A Laika Radio Classic. Play.

0: So I'm rating this film really highly. Loved it to bits. Cocktail 2. Even though there's a couple of bits in there, you can kind of think, oh man. But it is a film, isn't it? So it's kind of like escapism. When you go to the cinema, you're hardly going to go there and do a degree on it. Just going to enjoy it. That's it. Feeling on there. Oh, I look so much into it. Anyway, it's yours truly, Vatch Badden here on Driver. More hits up next. Quick reminder also, Hurry Hurrying concert tickets giveaway. 4th of July in London. It's taking place at the Royal Festival Hall. Leica Radio being the exclusive radio partner. Simply tell me the name of your favourite Hurry Hurrying song. A lot of correct answers, or should I say a lot of answers coming through. So I will announce the winner shortly. TNCs do apply for the competitions on air and online.
1: Playing next with Raj Patton.
0: Stand by, Adnan Sami. Gabine, Gabine is on the way.
1: Raj Patton. Drive is sponsored by Pepe's. Harissa Honey Melt. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
2: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में
3: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है
4: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय
5: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर
6: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है
5: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में
2: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जिन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
1: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपट
10: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
11: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840 TW Pays हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत
12: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म एवरी स्पून फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल वार्म मेक पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल
13: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड यर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस
12: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ
1: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: Four beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: New hits on Leica Radio.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: ये है लाइका रेडियो,
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंg ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03 9635757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, like our radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: Welcome to the jungle.
1: Film bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
1: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में.
0: ये है लाइका गोल्ड 2.

0: ही है
1: लाइका रेडियो।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
5: दुल्हन के लिए मेकअप।
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
8: I'm going out on my new paddleboard. The last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
9: Okay, help's on its way.
10: Grab my hand!
11: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
12: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
13: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.